0: हाय आई एम शांतनु। आपका नाम?
1: मोहब्बत।
0: सच्ची?
1: यकीन नहीं होता तो करके देख लो।
2: क्यों धड़कन धड़के हाय रे